उसने तुम पर मरा हुआ जानवर और लहू और सुअर का गोश्त और जिस चीज पर खुदा के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया है। हाँ, जो नाचार हो जाए बशर्ते के खुदा की नाफरमानी न करे और हद जरूरत से बाहर न निकल जाए, उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अस्सलाम वालेकुम खवातीन हजरात, प्रोग्राम हयात तैयबा की 32वीं नशिस्त के साथ कासिम भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामईन, आज की इस नशिस्त में हम गज़वा बदरे कुबरा और उसके असबाब के सिलसिले को मजीद आगे लेकर चलेंगे। इस्लामी लश्कर की तादाद और कमान की तकसीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रवानगी के लिए तैयार हुए तो आपके हमरा कुछ ऊपर 300 अफराद थे, यानी 313 या 314 या 317, जिनमें से 82 या 83 मुहाजिर थे और बकिया अंसार। फिर अंसारी में से 61 कबीला औस से थे और 70 कबीला खजरज से। इस लश्कर ने गजवे का ना कोई खास एहतमाम किया था और ना मुकम्मल तैयारी, चुनाचे पूरे लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े थे, एक हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु का और दूसरा हजरत मकदाद बिन अस्वद कंदी रजी अल्लाह तआला अन्हु का, और 70 ऊंट, जिनमें से हर ऊंट पर 2 या 3 आदमी बारी बारी सवार होते थे। एक ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत मरसद बिन अबी रजी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में आया था, जिन पर तीनों हजरात बारी बारी सवार होते थे। मदीने का इंतजाम और नमाज की इमामत पहले पहल हजरत इब्ने उमे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु को सौंपी गई, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मकामे रोहा तक पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हजरत अबू लबाबा बिन अब्दुल मंजर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मदीने का मुंतजिम बनाकर वापस भेज दिया। लश्कर की तंजीम इस तरह की गई कि एक हुबैश महाजरीन का बताया गया और एक अंसार का। महाजरीन का अलम हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिया गया और अंसार का अलम हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु को, और जनरल कमान का परचम जिसका रंग सफेद था हजरत मुसब बिन उमेर रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिया गया। ममीना के अफसर हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु मुकर्रर किए गए और मैसरा के अफसर हजरत मकदाद बिन अस्वद रजी अल्लाह तआला अन्हु, और जैसा कि हम बता चुके हैं पूरे लश्कर में सिर्फ यही दोनों बुजुर्ग शहसवार थे। साका की कमान हजरत कैस बिन रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले की गई और सिपा सलार आला की हैसियत से जनरल कमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने खुद संभाली। बदर की जानिब इस्लामी लश्कर की रवानगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस नामुकम्मल लश्कर को लेकर रवाना हुए तो मदीना के दहने से निकलकर मक्का जाने वाली शहराए आम पर चलते हुए बीर रूहा तक तशरीफ ले गए। फिर वहां से आगे बढ़े तो मक्के का रास्ता बाएं जानिब छोड़ दिया और दहने जानिब कतरा कर चलते हुए नाजिया पहुंचे। मंजिल मकसूद बदर थी। फिर नाजिया के एक गोशे से गुजर कर वादी रहकान पार की। ये नाजिया और दर्रा सफरा के दरमियान एक वादी है। इस वादी के बाद दर्रा सफरा से गुजरे, फिर दर्रे से उतर कर वादी सफरा के करीब जा पहुंचे और वहां से कबीला जुहनिया के 2 आदमियों यानी बसीस बिन उमर और अदी बिन अबीर रगबा के काफले के हालात का पता लगाने के लिए बदर रवाना फरमाया। मक्के में खतरे का ऐलान। दूसरी तरफ काफले की सूरत हाल ये थी कि अबू सुफियान, जो इसका निगहबान था, हद दर्जा मोहताद था। उसे मालूम था कि मक्के का रास्ता खतरों से पुर है, इसलिए वो हालात का मुसलसल पता लगाता रहता था और जिन काफिलों से मुलाकात होती थी उनसे कैफियत दरियाफ्त करता रहता था। चुनाचे उसे जल्दी ही मालूम हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को काफिले पर हमले की दावत दे दी है, लिहाजा उसने फौरन जमजम बिन अमरु गफारी को उजरत देकर मक्के भेजा कि वहां जाकर काफिले की हिफाजत के लिए कुरैश में नफीर आम की सदा लगाए। जमजम नहायत तेज रफ्तारी से मक्का आया और अरब दस्तूर के मुताबिक अपने ऊंट की नाक चपड़ी, कजावा उल्टा, कुर्ता फाड़ा और वादी मक्का में उसी ऊंट पर खड़े होकर आवाज लगाई, ऐ जमात कुरैश, काफला काफला, तुम्हारा माल जो अबू सुफियान के हमरा है उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उसके साथी धावा बोलने जा रहे हैं, मुझे यकीन नहीं कि तुम उसे पा सकोगे, मदद मदद। जंग के लिए अहले मक्का की तैयारी। ये आवाज सुनकर लोग हर तरफ से दौड़ पड़े। کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اس طرح گویا سب ہی نکل پڑے، خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے ایک قرضدار کو بھیجا۔ گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا، اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو ادی کے کوئی پیچھے نہ رہا۔ البتہ بنو ادی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ مکی لشکر کی تعداد، ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھی۔ اونٹ کثرت سے تھے، جن کی ٹھیک ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن حشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کے رست کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ قبائل بنو بکر کا مسئلہ، جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دے اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گھر جائے۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کرے گا۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اگر ناصر یہ دعویٰ ہے میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन फ्राम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, लाहौर।
3: एंड दिस इज़ डॉक्टर गुलरेज़ अहमद फ्राम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर ओवर देयर।
2: टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड वाई इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वाई इट्स बींग इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान एज वेल। And our guest speaker, Dr. Gurez Ahmed, will be explaining about outcome-based education and its different modules and what are actually the ongoings in this particular field.
3: Right. So we will start with the OBE, which is known as outcome-based education. In my opinion, in Pakistan, students are being taught curriculum and the curriculum is not being applied so that their skills are managed and their skills have to be like assessed. So it is better to have a system in which they can be assessed, as well as there is an analysis at the end that have they achieved those skills.
2: Dr. please can you explain how outcome-based education is different from traditional education process?
3: So the traditional is basically teacher is giving input to the students and they are assessing through the assessments. And if we talk about outcome-based education, it is basically student-centered and it is not the typical thing. And in this, I think it is the problem with our usual system in which when we are doing primary and secondary education over there, these are not being applied correctly. And I think we should improve the system of our primary as well as secondary education. And in order to do that, we should have some rubrics to follow. And those rubrics will basically assess whether the students have achieved something out of their education. Something means the skills.
2: Okay, so as you have told, to my understanding, it means that not just relying on cramming different, chapters or stubbing down different kind of, knowledge down your throats. It's basically, it depends on the level of skill you achieve. Mm-hmm. The students are, outcome-based education is basically centered around what kind of skill and what level of skill is basically achieved.
3: Yes.
2: Okay, thank you so much, Arsab. Okay, so there is also an International Engineering Alliance. Can you tell us about that, sir?
3: There are like different organizations around the world which have helped us as engineers to basically apply outcome-based education. To my knowledge, like there are four educational accords. One is Washington Accord. The second is Sydney Accord, Dublin Accord, as well as Abbott. So Abbott and Washington Accord are the main ones. And we as engineers in Pakistan, the Pakistan Engineering Council has MOUs with Washington Accord, and they have applied Washington Accord in its true spirit.
2: अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे काइंडली बता सकते हैं कि जो OBE है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, ये हमारे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन प्रोसेस है जो साल साल से चलता आ रहा है, उससे किस तरह डिफरेंट है ये
3: OBE सिस्टम? अगर मैं इसकी बात करूं तो वो बेसिकली क्या करता है कि असेसमेंट्स तो होनी है, जो हमारे पास टेस्ट्स क्विजेस वगैरह होने हैं स्टूडेंट्स के, और जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह करने हैं, वो तो उसी ट्रेडिशनल उसके अंदर चल रहा होता है। बट OBE सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपने उन असेसमेंट्स को मैप करते हैं, कोर्सेज को मैप करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कुछ आउटकम्स के साथ, कुछ स्किल्स के साथ, ताकि हम उन्हें असेस कर सकें। असेस किस तरह करेंगे? बेसिकली हम बताएंगे कि स्टूडेंट ने ब्लड से एक असाइनमेंट की है तो उस असाइनमेंट में उसने क्या अचीव किया, उसको हमने किस तरह असेस किया, उसको उसकी असेसमेंट का लेवल क्या था और उस असेसमेंट लेवल पे उसने उस स्किल को अचीव किया है या नहीं किया। ये हमारा बेसिकली सिस्टम है जिसको हम OBE कहते हैं।
2: इट्स गुड। अच्छा, अब जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि एक इंटरनेशनल अलायंस बनी है, ठीक है, इंजीनियरिंग की फील्ड की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो, कि उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं OBE के ऊपर।
3: OBE के अंदर बेसिकली यहाँ पे इफ़ आई टॉक अबाउट इट, जो अलाइंसेज हैं वो मेरे पास चार किस्म की हैं, जो चार मेजर बॉडीज हैं अराउंड द वर्ल्ड जो ये काम कर रही हैं, जो इंजीनियरिंग को हेल्प आउट कर रही हैं। नॉट जस्ट इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग को देखते हुए जो इंजीनियरिंग के अंदर हमने ये अलाइंसेस की हैं, उन अलाइंसेस को देखते हुए बाकी भी अदर डिसिप्लिन्स भी इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर मैं इनकी अलाइंसेस की बात करूँ तो देयर आर फोर मेजर अलाइंसेस जिसके अंदर वॉशिंगटन अकॉर्ड है, सिडनी अकॉर्ड है, डुबलिन अकॉर्ड है और एबट है। वॉशिंगटन अकॉर्ड को इंजीनियरिंग काउंसिल इज़ फॉलोइंग इन इट्स ट्रू स्पिरिट। और अगर मैं इसकी बात करूं कि वॉशिंगटन अकॉर्ड क्या है, वो बेसिकली अभी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस फर्दर करेंगे कि वॉशिंगटन अकॉर्ड क्या है, तो वो इज़ वन ऑफ द सिस्टम्स जिसके साथ हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने MOUs साइन किए हैं और उन MOUs को बेसिकली वहाँ से टीम आती है और उसको असेस करती है और सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोसेसेस हैं उनको देखती है।
2: ओके, सो डॉक्टर साहब, इसका हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो लेट्स सपोज इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ एजुकेशन वहाँ से लेते हैं जहाँ वॉशिंगटन अकॉर्ड और PEC एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में हमारा तीनों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, ऑल थ्री प्रोग्राम्स आर एक्चुअली एक्रेडिटेड बाय PEC वॉशिंगटन अकॉर्ड के ऊपर, उनको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा उन स्टूडेंट्स के मुकाबले में जो PEC से रिकॉग्नाइज नहीं है या वॉशिंगटन अकॉर्ड से रिकॉग्नाइज नहीं है, इसके ऊपर UCP के अंदर स्टूडेंट्स को आने का क्या मेजर बेनिफिट होगा आपके ख्याल में?
3: देखिए, मैं दुनिया की अगर बात करूँ ना, तो हर अगर आप यूनिवर्सिटी की किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी कोर्स उठा के देखें तो उसके अंदर ये बताते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू अचीव दिस। वो ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं कि कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और स्टूडेंट्स की आउटकम्स क्या हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस सिस्टम को अडॉप्ट इंजीनियरिंग काउंसिल ने थोड़ा सा लेट किया है, 2014 के अंदर किया है, बट ओवरऑल दुनिया के अंदर इसको जो है ना सिस्टम को अडॉप्ट बहुत पहले से कर दिया हुआ था। तो इस सिस्टम को अडॉप्ट करने का फ़ायदा स्टूडेंट्स को ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दे कैन कम्पीट विद एनी other student and they do not have to get re-accredited from any other organization. Let's say if they move to US or Australia. Australia ne to even pichle dinon ke andar ye kaam bhi kiya tha ke kyunki we were accredited with the वॉशिंगटन अकॉर्ड, तो हम उस अकॉर्ड की वजह से उनको वीज़ाज दे रहे थे जिसके अंदर 476 कैटेगरी थी, जो जहाँ यहाँ से इंजीनियर डायरेक्ट अप्लाई करते थे और वहाँ पे डायरेक्टली जॉब्स के लिए एलिजिबल थे। अब क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी सी सैचुरेशन हुई है तो उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा डिले कर दिया उसको, यानी कि ऑब्वियसली बहुत सारी जो कोविड के बाद स्टूडेंट्स वहाँ पे मूव किए हैं तो इस वजह से उन्होंने थोड़ी सी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, बट ऑब्वियसली इस एक्रेडिटेशन के बाद वो हेल्प आउट करती है स्टूडेंट्स को कि उनको बाहर के एग्जाम्स नहीं देने पड़ते और डायरेक्टली वो जॉब मार्केट के लिए सूटेबल हो जाते हैं।
2: कीप लिसनिंग, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक एट FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: जी वेलकम बैक। सो डॉक्टर साहब, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो ये है कि भाई अगर आप पाकिस्तान की किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से आप एजुकेशन हासिल करते हैं जो PEC एंड वाशिंगटन अकॉर्ड पे एक्रेडिटेड प्रोग्राम है, तो आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के स्टेटस अचीव कर लेते हैं। ठीक है, एंड सर अब ये पता करना है कि एक्चुअली ये जो एक्रेडिटेशन है इसका प्रोसेस कैसे होता है या इसका क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, काइंडली इसका बता सकते हैं।
2: बेसिकली अगर मैं टॉप टू बॉटम अगर बात करूँ तो बेसिकली क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अपना एक विजन इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसका कोई विजन है, उसने जितने स्टूडेंट्स या जितनी फैकल्टीज को भी यहाँ पे अकोमोडेट करना है, जितने को भी टीच करना है स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने एक विजन बनाना है। फिर उसका एक मिशन भी होता है यूनिवर्सिटी का। मिशन किस चीज़ का है वो बेसिकली डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट, जैसे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट का अपना मिशन है, इसी तरह अगर मैं FOST की बात करता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका अपना मिशन है सारी, यानी कि अगर मैं UCP के हर डिपार्टमेंट की बात करूँ तो उन्होंने अपना एक मिशन बनाया हुआ है कि हम जो स्टूडेंट्स को टीच करेंगे दे विल बी एबल टू बी अ गुड इंजीनियर एज वेल एज साइंटिफिकली साउंड एंड दे हैव इनोवेटिव आइडियाज एट द एंड ऑफ दैट डिग्री। तो अब अगर मैं टॉप टू बॉटम बात करूं तो आप विजन अपना इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर अपना मिशन इंट्रोड्यूस करते हैं, मिशन डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद जो है आप ये अपने डिपार्टमेंट जो ऑब्वियसली फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स ने अलग-अलग अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने कि मैं ये इस किस्म का इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ, मैं सिविल इंजीनियर या फॉर दैट्स एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना चाह रहा हूँ। तो जब ये चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं, आप साउंड होते हैं, आपको पता होता है कि जी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपकी डिग्री के, जो आप डिग्री ऑफर कर रहे हैं, तब उसके बाद आप बेसिकली ये जो वॉशिंगटन अकॉर्ड हम फॉलो कर रहे हैं उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो लर्निंग आउटकम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर होने चाहिए, वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो बताते हैं कि उनके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अगर मैं जनरली जेनेरिकली बात करूं तो उन एट्रीब्यूट्स के अंदर इंजीनियरिंग नॉलेज फर्स्ट एट्रीब्यूट, देन आफ्टर दैट हम ये कहेंगे जी प्रॉब्लम एनालिसिस आना चाहिए, उनको कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी आनी चाहिए। पहले नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम एनालिसिस होगा, देन आफ्टर दैट they should be able to design something and develop solutions, because obviously there are like problems that are occurring in our system, aur un system ke andar jaise abhi agar main baat karun to hamare paas bahut sare aise problems hain jinko address karna baki hai on Pakistan level as well as internationally, bahut sari aisi problems hain jinko address nahi kiya hua, to ab development aani chahiye unko as engineers, they should be innovators and they should be able to investigate, which is next attribute, के उनको इन्वेस्टिगेट करना आना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उनको मॉडर्न टूल्स यूज करने आने चाहिए, which is the next one। अगर मॉडर्न टूल्स की बात करूँ तो अब अगर मैं एक इंजीनियर बना रहा हूँ तो इंजीनियर मस्ट बी साउंड इन अप्लाइंग प्रॉब्लम्स on a simulation, like they should be able to apply simulations, they should be able to have sound knowledge of all the things, all the applications that are available.
1: सर चले मॉडर्न टूल्स की अगर बात करें, आपने बताई है तो हम UCP के अंदर जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में, तो क्या ये हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अवेलेबल होती हैं मॉडर्न टूल्स के लिहाज से? ठीक है, इस तरह के कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ से बेनिफिट कर सकते हैं, जिनसे अपने स्टडीज के अंदर और अपने आप को एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लेवल पे लेके जाने के लिए?
2: देखिए बेसिकली अगर मैं बात करूं कि हमारे पास टूल्स तो हमारे पास सारे हैं जो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास टूल्स आ रहे हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स की, क्योंकि ऑब्वियसली मॉडर्न टूल्स के अंदर सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, और अगर कोई नई ऐसी इनोवेटिव मशीनरी है जो ज़रूरी है तो हमारा डिपार्टमेंट तो उसको फौरन एक्वायर करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो हमने 3D प्रिंटर्स एक्वायर किए हैं और वो मॉडर्न है बेसिकली, स्टूडेंट्स ने कभी सुना भी नहीं होता आजकल, अभी इतने वो आम नहीं हुए, दे आर नॉट दैट ईजी टू गेट as well, because obviously government ki thodi si restrictions hain, but as an educational institute we are able to get those things aur unko phir hands on practice uske upar karwate hain. Phir jaise ki softwares bahut sare hain jiske andar agar main softwares ki baat karun, on mechanical engineering SolidWorks ke upar hum kaam karwa rahe hain, hum inko jo hai programming languages bahut sari apply karwa rahe hain, python ho gayi aur jo ki machine learning ke andar aajkal artificial intelligence data science ke andar bahut zyada use ho rahi hai, to hum usko bhi use kar rahe hain. To UCP at its level agar har department ki baat kare to wahan pe har qisam ke modern tools use kiye ja rahe hain. To main mere khayal mein ye zaruri bhi hai kyunki obviously jo bachcha aa raha hai jis system se aa raha hai usko aajkal he is well informed ke kya cheezein ho rahi hain, kis taraf duniya ja rahi hai. Aur abhi agar main baat karun waise apni wo mobile ki screen se sab kuch dekh sakta hai. He has so much knowledge ke main expect karta hun ke in the near future agar hum in modern tools ko apply na karte jaye, sath sath innovate na karte jaye, to maybe it's possible ke students aapko aake bata rahe hun ke sir ye jo hai ye cheez to maine yahan pe YouTube ke upar dekhi hui hai ya maine iski video dekhi thi ya कुछ भी अप्लाई किया है, तो इट इज पॉसिबल कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ना कर सके, वो गाइड कर रहे हो अपने टीचर्स को.
1: तो उसका मतलब है यूसीपी इज वेल इक्विप्ड विद दोस मॉडर्न टूल्स और ताकि हमारे स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सके, उनसे अपना वो स्किल का लेवल बढ़ा सके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बराबर आने के लिए.
2: बिल्कुल बिल्कुल.
1: राइट सर, प्लीज कैरी ऑन एक्सप्लेनिंग द एट्रीब्यूट्स.
2: अगर हाँ या ये तो पांच एट्रीब्यूट्स की मैंने बात की थी. फिर इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं यूनिवर्सिटी की लेवल के ऊपर बात करूं तो स्टूडेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल. हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यहाँ पे निकाल रहे हैं सोसाइटी के अंदर. ही शुड बी वेल वर्स्ड विद द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जिसके अंदर एथिक्स के अंदर उसको पता होना चाहिए कि उसके क्या राइट्स हैं और दूसरों की रिस्पेक्ट क्या है. दूसरा इंसान अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली ही शुड हैव दैट नॉलेज एज वेल कि उसको मैंने किस तरह ट्रीट करना है. उसने यहाँ के एथिक्स पाकिस्तान के एथिक्स को फॉरगो नहीं करना, उसको देखना है, उसको नॉलेज होनी चाहिए. ही मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विच इज़ द नेक्स्ट एट्रीब्यूट जिसके अंदर उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. अगर मैं बात करूँ कि हम अगर लेट से एक स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास तो वो इतना ज़्यादा उसने कभी कम्युनिकेट नहीं किया होता डिफरेंट फोरम्स के ऊपर. कम्युनिकेशन के बात ये है कि ही इज नॉट इक्विप्ड विद प्रेजेंटेशंस. कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो डिबेटिंग सोसाइटीज के अंदर जाते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं, बट अगर मैं हर इंजीनियर की बात करूं तो ही मस्ट बी एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. तो उसको भी एड्रेस कर रहा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जिसके अंदर उसकी कम्युनिकेशन लेवल को, उसकी राइटिंग लेवल्स को उस जगह पे लेके आ रहा है जो कि एक इंजीनियर से रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करूं तो इंडिविजुअल एंड टीम वर्क. बेसिकली इंडिविजुअल जो है स्टूडेंट्स इंडिविजुअली पढ़ के आ रहे होते हैं, टीम्स के अंदर उन्होंने कभी काम नहीं किया होता, तो ये एट्रीब्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्हें पता हो कि मैं अगर आ रहा हूँ किसी बैकग्राउंड किसी भी बैकग्राउंड से तो मुझे कल को किसी जॉब के लिए जाना है इंडस्ट्री के अंदर. तो इंडस्ट्री के अंदर तो डिफरेंट पीपल आर डूइंग थिंग्स. वो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम वहाँ पे कर रहे होंगे उसके साथ मिलके ही उसने काम करना, तो ही शुड हैव दिस नॉलेज कि मैंने टीम के अंदर किस तरह काम करना है. अगर मैंने टीम को लीड करना तो उसको किस तरह लीड करना है. तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी है जिसके अंदर हम मैनेजमेंट सिखाते हैं बच्चे को, मैनेजेरियल स्किल्स उसके अंदर डिवेलप करते हैं कि ही मस्ट बी एबल टू मैनेज थिंग्स, ही मस्ट बी एबल टू मैनेज स्टफ लाइक ह्यूमंस को मैनेज किस तरह करना है.
1: Okay, listeners, keep listening. We'll be right back after a short musical break at FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक लिसनर्स. ओके डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर सकते हैं कि ओबीई डेवलपमेंट के अंदर क्या लेवल्स इन्वॉल्व्ड हैं, किस तरह स्टूडेंट्स वो स्किल गेन करते हैं और किस तरह हम जो टीचर्स हैं उनको पढ़ाने का क्राइटेरिया सेट करते हैं?
2: बेसिकली अभी हम लेवल्स की बात कर रहे थे, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे पास, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो हमारे पास कोर्स लर्निंग आउटकम्स होते हैं. हर कोर्स के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि यार इस कोर्स के बाद स्टूडेंट जो है ही मस्ट बी एबल टू डू अ फ्यू थिंग्स इंडिपेंडेंटली और उसके ये स्किल्स डेवलप हो चुके हों इस कोर्स को पढ़ने के बाद. तो वो कोर्स लर्निंग आउटकम्स होते हैं और उस कोर्स लर्निंग आउटकम्स को आगे फर्दर हम मैप करते हैं किसके साथ, जो हमने मैंने अभी आपको प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स बताए हैं. तो अब अगर ओवरऑल बात करूं मैं ओबीई सिस्टम की, तो ये अगर ऊपर से स्टार्ट करूं तो मेरे पास विजन है, फिर मिशन है, विजन ऑफ द यूनिवर्सिटी, मिशन ऑफ द फैकल्टी, और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट के प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स जो है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है इनकलकेट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर वो है. फिर उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं, जो कि मैंने अभी आपको 12 प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स बताए हैं. फिर उसके बाद आ जाते हैं कोर्स लर्निंग आउटकम्स. तो अब हमारे पास अगर इंजीनियरिंग की बात करूं तो हमारे पास 40 डिफरेंट कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज को हम ओवर टाइम पढ़ाते हैं और उसके अंदर एटलीस्ट 3 हमारे पास कोर्स लर्निंग आउटकम्स पर कोर्स हों तो 120 कोर्स लर्निंग आउटकम्स, विच इज़ अ वे बिग थिंग. और एटलीस्ट हमारे पास 3 दफ़ा असेस भी उनको हमने करना है कोर्स के अंदर. और उनकी असेसमेंट किस तरह होगी, वो क्विजेस के थ्रू हो सकती है, वो टेस्ट्स के थ्रू, वो मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर हो सकती है, वो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर हो सकती है, प्रेजेंटेशंस के थ्रू हो सकती है, फिर लैब असाइनमेंट्स हमारे पास, क्योंकि ऑब्वियसली इंजीनियर जो है वो थ्योरेटिकल इंजीनियर तो हम बनाते नहीं हैं, तो लैब्स के अंदर जो वो काम कर रहे होते हैं उसकी असेसमेंट भी हो रही होती है. तो कोर्स लर्निंग आउटकम्स के अंदर फिर हमने कोर्स के साथ तो हमने उनको मैप किया होता है, उसकी थ्योरी, उसकी एनालिटिकल स्किल्स हम कोर्स के अंदर डेवलप कर रहे होते हैं, बट उसके जो स्किल्स हैं वो लैब के अंदर वो डेवलप करता है. तो लैब के अलहदा से फिर हम डिफाइन करते हैं. अब अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली कोर्स के अंदर ये असेसमेंट्स की हैं चीज़ें, और जो लैब की असेसमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर होती है. उसके अंदर हम रूब्रिक्स बनाते हैं, रूब्रिक्स के अंदर डिफाइन करते हैं कि यार अगर स्टूडेंट ने इस तरह का रिस्पांस दिया या इस तरह का स्किल एक मशीन को ऑन करने के, उसको वर्किंग पोजीशन के अंदर लाने के, और उसके अंदर जो एनालिसिस हमने डेवलप करना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसके डिफरेंट वर्क एथिक्स हो सकते हैं. लेट्स से अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूँ तो हम डिफरेंट फ्लूइड्स के साथ डील कर रहे हैं. अब एक स्टूडेंट अगर आता है और वो फ्लूइड किसी भी लिक्विड को स्पिल कर देता है ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, तो उसके स्किल्स को हमने असेस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और अगर हमने उस चीज़ को असेस नहीं किया प्रॉपरली कि ही डिड ही मैनेज दोज थिंग्स. अगर मैं दूसरी तरफ फ्लूइड से हट के बात करूं तो हमारे पास RAC की लैब है, जिसके रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन कहते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन्वॉल्व्ड है, और वहाँ पे कहीं पे फायर हैजर्ड हो जाता है या कोई प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, तो स्टूडेंट्स मस्ट हैव नॉलेज कि मैंने अब इसके साथ किस तरह डील करना है. तो अगर वो नॉलेज नहीं है स्टूडेंट के पास और उस लैब को उसने पास कर लिया है विथ फ्लाइंग कलर्स, तो इट इज़ यूजलेस, क्योंकि कल को उसने इंडस्ट्री के अंदर काम करना है. इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ हो रहे होंगे और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हाउ ही इज़ एबल टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स. और अगर हमने वो चीज़ नहीं सिखाई, उसको इन चीज़ों का नहीं पता, तो उसको हमने किस तरह असेस किया था और उसको एक ए ग्रेड दिया था इन लैब. क्योंकि यूजली इससे पहले जब ये सिस्टम नहीं था, तो इससे पहले जो लैब्स को पास करना बहुत आसान था. आपने एक लैब की कॉपी बनाई, उसके अंदर उसका एक छोटा सा वाइवा हो गया और उसको आपने असेस करके बता दिया. अब जो है हम उस लैब के अंदर जो असेसमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर 3 डोमेन्स के अंदर हम उनको स्टूडेंट्स को असेस करते हैं. एक उसकी इफेक्टिव डोमेन है, एक उसकी साइकोमोटर डोमेन है, और एक उसकी कॉग्निटिव लेवल के ऊपर डोमेन है. कॉग्निटिव, ये जो टर्म्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लेवल्स हैं, जो कि एक एजुकेशन से रिलेटेड पर्सन गुजरा है तो उसके अंदर बेसिकली ही हैज डिफाइंड डिफरेंट लेवल्स के जो हमारे पास स्किल्स हैं स्टूडेंट्स के अंदर वो कॉग्निटिव लेवल के हैं, यानी कि अगर वो पढ़ के अंडरस्टैंड करके उसको अप्लाई कर देता है, किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देता है तो वो कॉग्निटिव स्किल्स हैं उसके। दूसरी तरफ बात करूं तो साइकोमोटो स्किल्स हैं स्टूडेंट्स के, उन साइकोमोटो स्किल्स के अंदर अगर फर्दर इसके अंदर जाऊं तो साइकोमोटो स्किल्स बेसिकली क्या होते हैं कि उसने मशीन को किस तरह ऑन किया, किस तरह उसको ऑपरेट किया, फिर आफ्टर परफॉर्मिंग अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंड कि उसने उसी तरह मशीन को छोड़ दिया या उसको क्लीन किया या उसके अंदर अगर कोई आउटलेट था, इलेक्ट्रिकल आउटलेट था, उसको स्विच ऑफ किया, उसने ऑपरेट एज सच क्या किया, उसके स्किल्स क्या थे, उसको एक्सपेरिमेंटल रिग को बनाने में उसके क्या एफिशिएंसी उसने उस अंदर अपनी पुट की, वो सारी चीज़ें उसके अंदर साइकोमोटो के अंदर उसके जो उसकी नॉलेज थी उसने करेक्टली उसको अप्लाई किया है कि नहीं किया वो हम उसके अंदर चेक कर रहे होते हैं। अदर थिंग इज इफेक्टिव डोमेन। अगर मैं इफेक्टिव डोमेन की बात करूं तो वो लेट से अब एक स्टूडेंट काम कर रहा है डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ और वो स्टूडेंट्स के साथ किस तरह बिहेव करता है, उसकी मूवमेंट इन द लैब किस तरह की है, उसने किस तरह रिस्पॉन्ड किया डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, तो वो हम असेस उसके अंदर इफेक्टिव डोमेन के अंदर कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स हैं जो जिसको करने के बाद हम कहते हैं कि एक जो स्टूडेंट हमने यहाँ पे किया है, जिसको हमने लेके आए हैं यहाँ पे, स्टूडेंट को इंजीनियर एक डिग्री दे रहे हैं, उसकी एक पहचान बना रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर ये इंजीनियर के अंदर नहीं होती, ये सारे एट्रीब्यूट्स नहीं होते तो इट इज़ इन माय ओपिनियन यूजलेस। मैं अभी इंजीनियरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ तो मैं ये यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि यूसीपी के अंदर एफर्ट्स अभी हो रही हैं कि यूनिवर्सिटी वाइड इस चीज़ को अप्लाई किया जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियरिंग नॉलेज है तो ऑब्वियसली हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर फैकल्टी के अंदर उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, उनको डिफाइन करना चाहिए, हर कोर्स के ऊपर उनकी कोई ना कोई आउटकम डिफाइन होनी चाहिए। इस सिलसिले में जो है मैनेजमेंट बहुत हेल्पफुल है। ऑब्वियसली हम एज एन इंजीनियर यहाँ से दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी एजुकेट करते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स हो रही हैं और ऑब्वियसली हमें अगर 2014 से हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया था तो हम इस वक्त भी लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं और ऑब्वियसली 11 इयर्स आफ्टर अप्लाइंग दिस एक्रेडिटेशन सिस्टम तो उसके अंदर भी हमें लर्निंग प्रोसेस के अंदर हैं, तो ऑब्वियसली ये एक दिन में तो नहीं होगा स्टार्ट, तो हम जो है इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं ऑन डिफरेंट लेवल्स, तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। हमें भी तकरीबन 2 साल जो है वो रिग्रस ट्रेनिंग हुई थी, तो अभी हम मैनेजमेंट के साथ मिल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एज अ होल अगर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद वेरी गुड रैंकिंग एंड ओवरऑल इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन पाकिस्तान, तो उसको अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस सिस्टम के ऊपर जाएं।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन बताया ऑन OBE वॉशिंगटन एकॉर्ड और जो एफर्ट्स UCP और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग UCP के अंदर कर रहा है अपने स्टूडेंट्स का लेवल इंटरनेशनल लेवल लेके जाने के लिए, ताकि वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा अपने फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो सके। ओके लिसनर्स, थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलरेस, आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमारे लिसनर्स को आउटकम बेस्ड एजुकेशन एंड वॉशिंगटन एकॉर्ड पे और जो एफर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब स्पेशली फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग कर रही है ताकि आपके स्टूडेंट्स का लेवल जो है वो हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, उनकी स्किल्स का भी और उनको अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिल सके इंटरनेशनली भी और नेशनली भी।
2: बिल्कुल,
1: एंड थैंक यू सो मच लिसनर्स एज वेल कि आपने अपना टाइम स्पेंड किया हमारे साथ, एंड विल बी बैक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विद अ न्यू गेस्ट। दिस इज मोहम्मद जैनुल आबिदीन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड आवर गेस्ट टुडे वर डॉक्टर गुलरेज अहमद ऑल्सो फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एंड थैंक यू सो मच, विल सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड टू 92.6 यूसीपी की दुनिया।
5: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
1: पहचान,
0: एक नई लगन,
1: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हों मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन,
1: यूसीपी नंबर वन।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया,
1: यूसीपी की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke din mein.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: News. मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना.
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी.
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया. आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: के सुर और ताल,
1: सुर और ताल,
0: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार,
1: और तकरार,
0: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन,
1: नई लगन।
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहसो तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
1: UCP No. 1।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 92.6 यूसीपी की दुनिया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जमान, एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे चैलेंजेस के बारे में कि फार्मेसी प्रोफेशन को कौन कौन से चैलेंजेस पाकिस्तान में फिलहाल फेस करने पड़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, काइंडली मुझे ये बताएं कि फार्मासिस्ट और फार्मेसी प्रोफेशन को जो चैलेंजेस इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं, उसके बारे में आपकी माहराना राय क्या है? क्या ये चैलेंजेस कभी ख़त्म होंगे कि हमेशा ये हम सुनते रहेंगे कि फार्मेसी जो सी ना प्रोफेशन अभी प्रोग्रेस कर रहा है, अभी प्रोग्रेस कर रहा है? लास्ट वन डेकेड के अंदर अगर हम बात करें तो कितना चेंजेस आप फील कर रहे हैं जब से आप प्रोफेशन में हैं?
2: डॉक्टर साहब, अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो आपको पता है कि लाइफ में चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होते। एक चैलेंज ख़त्म होगा तो फिर नया चैलेंज आ जाएगा, तो वक्त के साथ साथ चैलेंजेस की जो हैयत है या नोयत है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन चैलेंजेस ख़त्म नहीं होंगे। एक वक्त ऐसा था जब कहा जाता था कि जी हमें नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड हैं, कि जो हमारे पास फार्मासिस्ट के नंबर्स कम हैं। तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि उसके ऊपर हमने फोकस किया और नंबर्स बढ़ाने की कोशिश की गई। वक्त के साथ साथ नंबर्स बढ़ते गए, लेकिन मुझे लगता है कि समहाउ हम उन नंबर्स बढ़ाने के चक्कर में शायद क्वालिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर गए। लेकिन इस वक्त जो करंट एरा चल रहा है उसमें शायद नंबर्स के साथ साथ अब हमें क्वालिटी की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम क्वालिटी फार्मासिस्ट प्रोड्यूस करेंगे तो ही आगे जो हमारे पेशेंट हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, उसको क्वालिटी लाइफ की तरफ ले जा सकेंगे। क्वालिटी प्रोफेशनल्स होंगे, क्वालिटी फार्मासिस्ट होंगे, तो इंडस्ट्री में हम क्वालिटी की मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकेंगे, क्वालिटी पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सकेंगे, क्वालिटी जो है वो क्वालिटी ऑफ द पेशेंट को हम इम्प्रूव कर सकेंगे। तो इसलिए अब सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास ये है कि हम अपनी क्वालिटी की तरफ तवज्जो दें और क्वालिटी प्रोफेशनल्स, क्वालिटी पर्सोनल्स जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। नो डाउट बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो क्वालिटी प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और UCP उनमें से एक है। बहुत सारे और भी इदारे हैं जो चाह रहे हैं कि उन वहाँ से पढ़ने वाले जो ग्रेजुएट्स हैं जब मार्केट में हैं तो वो उनका नाम पैदा करें, उसमें बहुत सारे लोग एफर्ट कर रहे हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि क्या आप नहीं समझते कि जब से एक लोग ये समझते हैं, हमारे जो सीनियर फार्मासिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि जब से प्राइवेट एजुकेशन आई है, प्राइवेट सेक्टर आया, उस वक़्त से लेके अब तक हमारे पास क्वालिटी प्रोड्यूस करना होना बंद हो गई है। ये मैं आई एम सॉरी, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं प्राइवेट सेक्टर को वो कर रहा हूँ, सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमारे बहुत सारे सीनियर्स इस बारे में कहते हैं कि प्राइवेट एजुकेशन ने, प्राइवेट सेक्टर ने फार्मेसी का बट्ठा डुबो के रख दिया। क्या ऐसा कहना दुरुस्त है?
2: सर, मुझे नहीं लगता कि ये बात 100% दुरुस्त होगी, क्योंकि अगर आप स्टैट्स निकाल लें, गवर्नमेंट जॉब जो प्रीवियसली या रिसेंट पास्ट में आई हैं, अगर आप उनमें गवर्नमेंट जॉब्स देखें तो बहुत सारे ऐसी सीट्स हैं जिनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल जो फार्मासिस्ट हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने ही फिल किया है। दूसरी बात ये कि CCL में कुछ अरसा पहले एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, टेस्ट लेते हैं अपनी सीट्स जो वेकेंट सीट होती है उनको फिल करने के लिए। तो आपको ये बात सुनकर बड़ी खुशी होगी कि वहाँ पे 12 सीटों पे कम्पीट करने वाले बहुत सारे फार्मासिस्ट थे, लेकिन वो 12 की 12 सीटें जो हैं वो ऑक्यूपाई की UCP के स्टूडेंट्स ने, और UCP एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही है।
1: बिल्कुल
2: ठीक है। दूसरे सर, आप देखें, जो मैं चूँकि एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को सर्व कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हम यहाँ पे जितने भी टीचर्स हम देखते हैं, रिसर्चर देखते हैं, वो अपनी 100% एफर्ट जो है वो पुट कर रहे होते हैं। एक थोड़ा सा जो बीच में इश्यू आता है वो आता है मेरिट का। चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्टूडेंट आते हैं वो बहुत हाई मार्क्स लेके आ रहे होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर के जो स्टूडेंट होते हैं वो कंपैरेटिवली उनके मार्क्स कम होते हैं। अब इससे हरगिज़ आप ये मतलब ना ले लें कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते या उनका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट जो है वो कम होता है, बस डायरेक्शंस का जो है डिफरेंस होता है। अगर आप उन स्टूडेंट को राइट डायरेक्शन पे ले आते हैं, राइट पाथ पे ले आते हैं, और उनके साथ एफर्ट करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं मार्केट में जाके, जो मार्केट का सर्वे हमें बताता है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो होगी प्रोफेशन के हिसाब से चैलेंजेस जो आप कह रहे हैं कि हमें अच्छे क्वालिटी फार्मासिस्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए और हो भी रहे हैं हमारे पास, और फार्मासिस्ट की इस वक्त कमी भी है हमारे मार्केट के अंदर, और उसको फुलफिल करने के लिए शायद आपकी बात से मैं यही अखज़ कर रहा हूँ कि उसको फुलफिल करने के लिए जितनी शॉर्टेज थी फार्मासिस्ट की पाकिस्तान में, वो ये प्राइवेट सेक्टर ने अपना एक कलीदी किरदार अदा किया है, और अभी भी हमारे पास फार्मासिस्ट जो से हैं वो कम है मार्केट के अंदर। तो सेकंडली ये तो होगी फार्मासिस्ट के हवाले से, प्रोफेशनल फार्मासिस्ट, कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट के हवाले से। अगर मैं कम्युनिटी के हवाले से चैलेंजेस की बात करूं, क्या हमारी कम्युनिटी के अंदर फार्मासिस्ट की जो अवेयरनेस है क्या उस तरह से उजागर हुई है पिछले 10 सालों में 20 सालों में, कि अभी तक हम उसी डगर के ऊपर हैं कि जाके मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, उन्हें जाके बताएंगे और वो बगैर किसी चेक किए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को और मेडिकेशन उठा के दे देंगे। कम्युनिटी के हवाले से अगर हम बात करें, या हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के रोल के हवाले से बात करें, या फिर हम इनका रोल डिफरेंट हमारे जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं जैसे कैंसर हॉस्पिटल्स में, इनके बारे में फार्मासिस्ट के रोल का हमारी कम्युनिटी को पता है या नहीं पता? अगर नहीं पता तो ये किस तरह से हम इसकी अवेयरनेस हम इसकी डेवलप कर सकते हैं? आप इस बारे में फर्दन फर्दन अगर आप बात कर सकें, पहले कम्युनिटी की बात कर लें फिर उसके बाद हॉस्पिटल की बात कर लें, तो काइंडली इसके बारे में आपकी क्या राय है?
2: टू बी ऑनेस्ट सर, अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, अवेयरनेस की बात करें, तो वो हमारी सोसाइटी में बहुत स्लो है। अगर आप अभी भी जो बड़े शहर हैं उनसे हट के देखें तो आपको शायद ही कहीं फार्मासिस्ट नज़र आए फार्मेसीज के ऊपर, या लोगों में उसका उस तरह से जो कॉन्सेप्ट है फार्मासिस्ट का आपको लोगों में मिले, जो कॉमन पॉपुलेशन है उसमें मिले। तो इसके ऊपर डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि जो फार्मासिस्ट है अगर वो फार्मेसी पे होगा तो उससे कितना एक बेनिफिट हमें हो सकता है।
1: माजरत के साथ यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, या आपसे मैं ये पूछना पसंद करूंगा कि क्या फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी को अश्योर करना हुकूमत वक्त का काम नहीं है, या किसी खास इदारे का काम नहीं कि वो फार्मासिस्ट की अवेलेबिलिटी को फार्मेसी पे अश्योर करे? कि इतनी एथिक्स तो अभी तक हमारे अंदर है नहीं कि हम अपने फार्मेसी का लाइसेंस लेके उसमें फार्मासिस्ट को या क्वालिफाइड पर्सन बी कैटेगरी मेडिकल स्टोर में हम उनको क्वालिफाइड पर्सन को भी बिठाएं। हमारे यहाँ तो ट्रेंड है कि हम क्या करते हैं कि रेंट आउट कर देते हैं, बी कैटेगरी वाले अपनी कैटेगरी को रेंट आउट कर देते हैं और फार्मासिस्ट अपनी कैटेगरी को रेंट आउट कर देते हैं। तो ये तो एक ट्रेंड सा चले जा रहा है जो अजल से हम देख रहे हैं। तो इस चीज़ को अश्योर करने के लिए हमारे कुछ मखसूस इदारे होंगे जो उसको अश्योर करेंगे कि हाँ भाई इसको फार्मासिस्ट को वहाँ पे। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जब तक ये चैलेंज मेरे ख्याल में पूरा नहीं होगा उस वक्त तक क्या समझते हैं कि क्या हम इस चीज़ को फार्मासिस्ट के रोल को उजागर कर सकते हैं कम्युनिटी के अंदर?
2: देखिए डॉक्टर साहब, ये जो इशू आपने रेज किया है ना सर, इसमें हम दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। देखें, रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। कहीं पे हमारे जो रेगुलेटरी जो इदारे हैं उनकी कोताही है, तो कहीं पे हमारी खुद की भी इसमें कोताही शामिल है। रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं अगर वो इन रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन को हार्ड एंड फास्ट कर दें कि ये इम्प्लीमेंट होने ही चाहिए तो डेफिनेटली उसे बेहतरी आएगी, लेकिन दूसरी तरफ हमें खुद भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना चाहिए। बीइंग अ फार्मासिस्ट, हमें इस चीज़ को अश्योर करना चाहिए कि हम अपने जो लाइसेंस हैं, हमारी जो कैटेगरीज हैं, वो रेंट आउट ना हों। अगर हमारी कैटेगरीज रेंट आउट नहीं होंगी तो ऑब्वियसली कम्युनिटी के अंदर फार्मासिस्ट की वैल्यू बढ़ेगी। आज जो हम कुछ पैसों की खातिर अपनी कैटेगरी को रेंट आउट कर देते हैं तो हमें कुशन दे देते हैं उन लोगों को कि वो हमारी इस कैटेगरी को यूज करते हुए अपनी मर्जी से लोगों की सेहत के साथ खेलें, जिस तरह की ड्रग्स वो रखना चाहें, जिस तरह की मेडिसिन वो रखना चाहें वो रखें और अपनी मर्जी से सेल करें। लेकिन अगर हम इस चीज़ को बाउंड कर दें, खुद से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि नहीं जी, हमने अपनी कैटेगरी रेंट आउट नहीं करनी बल्कि फार्मेसी पे हमने खुद खड़े होना है, तो उससे एक तो हमारी अहमियत लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी और जो एक नोबल प्रोफेशन है हेल्थ केयर सिस्टम का, उसमें को हम सही सर्व कर सकेंगे। जब एक फार्मासिस्ट होगा और उसके सामने जब प्रिस्क्रिप्शन आएगी तो जिस वे में, जिस तरह से एक फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली मेडिसिन को डिस्पेंस कर सकता है, एक लेमैन नहीं कर सकता। जो बिजनेसमैन होता है, ये कॉमन सी एक बात है कि बिजनेसमैन हमेशा अपने बिजनेस को देखता है, उससे चाहे किसी को फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, उसने सिर्फ अपना बेनिफिट लेना होता है। बहुत कम ऐसे बिजनेसमैन है जो अपने बेनिफिट के साथ साथ अपनी कम्युनिटी को सर्व भी करना चाह रहे होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ साथ हम खुद भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करें और अपनी कैटेगरीज को रेंट आउट ना करें, और दूसरी तरफ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो इस चीज को अश्योर करें कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं कि फार्मासिस्ट जो है वो फार्मेसी पे जरूर होगा, क्वालिफाइड पर्सन की जो प्रेजेंस है उसको कंफर्म करें, अश्योर करें, तो डेफिनेटली हमारे सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट जरूर आएगी।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एलेबोरेट किया हमारी कम्युनिटी फार्मेसी में, फार्मेसी प्रैक्टिस के हवाले से, फार्मासिस्ट के रोल के हवाले से। मुझे ये भी साथ साथ बताते जाएं कि क्या जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, अगर उसके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है तो उसके अंदर वो क्या क्या चीज़ों को चेक करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर या पेशेंट, कि वो क्या क्या चीज़ों को चेक करेगा उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, कि उस वाकई पता लगे कि यहाँ पर ये बंदा फार्मासिस्ट है और वो कौन कौन सी चीज़ों को चेक कर रहा है और वो पेशेंट को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो चेक करेगा पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद।
2: देखिए सर, जब पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है फार्मासिस्ट के बाद, तो जो प्राइम रोल बनता है फार्मासिस्ट का वो ये है कि प्रिस्क्रिप्शन को एवेल्युएट करे और उसके अंदर अगर कोई एरर है तो वो उन एरर्स को ओमिट करने की कोशिश करे।
1: एरर यहाँ पे किस किस्म के हो सकते हैं डॉक्टर?
2: प्रिस्क्रिप्शन में अक्सर देखने को आया है कि डोज से रिलेटेड, यानी एक दवा है उसकी एक मखसूस मकदार जो है वो पेशेंट को लेनी है, लेकिन बाज़ अकात डोज जो है वो गलत लिखी होती है, बाज़ अकात गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब की होती है, बाज़ अकात ये होता है कि एक ही मेडिसिन दो अलग अलग नामों से प्रिस्क्राइब की होती है। तो एक पेशेंट को अगर एक मेडिसिन चाहिए और वही मेडिसिन दो नामों से वहाँ पे लिखी हुई है, तो वो एक ही वक्त में दोनों मेडिसिन जो अलग अलग नाम से लिखी हुई है, यानी एक मेडिसिन जो दो अलग नाम से लिखी हो वो ले लेगा तो ओवरडोज हो जाएगी, जिससे पेशेंट को नुकसान हो सकता है। तो जो फार्मासिस्ट है उसका यही रोल है कि इन जो एरर्स हैं, ये जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन के, उनको देखे और उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन को डिस्पेंस करते हुए जो पेशेंट है उसको काउंसिल भी करे कि इस मेडिसिन को आपने कैसे लेना है। और अगर आप जो मेडिसिन, एक बाजू का पेशेंट रेजिस्ट भी करते हैं कि डॉक्टर साहब ने या एक्स वाई जी किसी ने भी उनको मेडिसिन ये लिख के दिए तो आप उसको निकाल के हो रहे हैं, तो अभी एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको प्रॉपर गाइड करे कि उसने अगर ये मेडिसिन उसमें से निकाली है या इसकी डोज कम की है या बढ़ाई है तो वो किस वजह से बढ़ाई है, ताकि पेशेंट जो वो मुतमैन हो सके।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये है कि आपकी इस बात से तो मैंने ये खर्च किया है कि फार्मासिस्ट ही ड्रग स्पेशलिस्ट है, अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिकेशन को तो फार्मासिस्ट ही ड्रग स्पेशलिस्ट है और उसको पता है कि कौन सी मेडिकेशन किस वक्त पे देनी है और किस तरह से देनी है, तो इससे तो यही सामने आ रहा है। तो हम इन चैलेंजेस, तो हमारे पास फार्मेसी प्रोफेशन में डॉक्टर साहब बहुत सारे हैं और इन चैलेंजेस को हम डिस्कस करते रहेंगे, और अभी हमने कम्युनिटी फार्मेसी के एक चैलेंज को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक पे और उसके बाद फिर हम दोबारा इन्हीं चैलेंजेस को सामने रखते हुए, हम हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते हुए आपसे कुछ इस्तफादा लेंगे। और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 यूसीबी की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीबी की दुनिया, और हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही मोजेस गेस्ट डॉक्टर मोहम्मद जमान, एसोसिएट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि चैलेंजेस के बारे में हम बात कर रहे थे, और हमने कम्युनिटी फार्मेसी के चैलेंजेस को थोड़ा सा डिस्कस किया था, एक दो पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। तो इसी तरह से फार्मासिस्ट का रोल हॉस्पिटल के अंदर भी है, तो आप क्या समझते हैं कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा और वो कितना कलीदी किरदार अदा कर सकता है? डॉक्टर साहब, ये भी एक चीज सुनने में आई थी कि डॉक्टर नर्सिस एंड फार्मासिस्ट की एक ट्राइंगल होती है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये ट्राइंगल सही तरीके से काम कर रही है? क्या इस चैलेंज से हम अभी तक बाहर निकले हैं कि नहीं निकले? क्योंकि डॉक्टर साहब आपको पता है मेरा भी प्रोफेशन यही है, तो मैं इस हवाले से आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि फार्मेसी का, फार्मासिस्ट का इस हॉस्पिटल के अंदर अभी तक कितना रोल डेवलप हो चुका है और कितना होना बाकी है।
2: डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ये एक कह लें कि इसके तीन पिलर हैं, एक डॉक्टर्स, नर्सेस और फार्मासिस्ट। तो जब तक ये तीनों पिलर जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी जिम्मेदारी से और ईमानदारी से नहीं निभाएंगे, हम इस हेल्थ केयर प्रोफेशन को आगे नहीं ले जा सकते। इसमें अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें तो फार्मासिस्ट को मेडिसिन एक्सपर्ट कहा जाता है, यानी अगर आपने मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको फार्मासिस्ट के पास जाना चाहिए। और आगे से फार्मासिस्ट जो है उसको भी टैग मिला हुआ है मेडिसिन एक्सपर्ट का, तो उसको भी उस मेडिसिन एक्सपर्ट का जो टैग है उसको जस्टिफाई करना है। और वो जस्टिफिकेशन कैसे होगी? थ्रू नॉलेज, थ्रू कॉम्पिटेंसी, थ्रू एक्सपर्टीज। तो इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि फार्मासिस्ट के बगैर हम हेल्थ केयर सिस्टम को आगे लेके जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं होगा। हेल्थ केयर सिस्टम के लिए फार्मासिस्ट का साथ में होना जरूरी है। जहां तक आपने बात की हॉस्पिटल के अंदर सर्विसेज की, तो यहाँ पे बदकिस्मती से मुझे चंद एक हॉस्पिटल के अलावा कोई बड़ी एग्जाम्पल सामने नजर नहीं आ रही जहां मैं ये बताऊं कि वहां पे जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जो रोल है वो उस सही मानों में अदा किया जा रहा है। हम आप देखते हैं कि हमारे पास आगा खान की एग्जाम्पल है, हमारे पास शौकत खानम की एग्जाम्पल है, जहाँ पे सही मानों में जो फार्मासिस्ट हैं, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी अब ये एफर्ट्स की जा रही हैं कि जो फार्मासिस्ट हैं, जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, वो सिर्फ मेडिकेशन की डिस्पेंसिंग तक ना रहें, सिग्नेचरी अथॉरिटी को इंजॉय ना करते रहें, बल्कि वार्ड के भी विजिट करें जहां पे वो सही मानों में देख सकें कि पेशेंट को मेडिकेशन की किस तरह से नीड है और उसके अकॉर्डिंगली हॉस्पिटल के अंदर वो सर्व कर सकें। तो जब तक हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फील नहीं करेंगे, हम अपने सिस्टम को बेहतर नहीं कर सकते। हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मासिस्ट को एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी, जो उनका एक्चुअल रोल है वो उनको वहां पे अदा करना पड़ेगा, तभी ये हेल्थ केयर सिस्टम जो वो आगे ग्रो कर सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आपके साथ बहुत सहरासिल गुफ्तगु हो रही है और इस गुफ्तगु को ख़त्म करने को कतई तौर पर दिल नहीं कर रहा, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको हम कंटिन्यू करें और आपके साथ एक नया अगला सेशन रखें। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें, आप हमें थोड़ा सा टाइम नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी दें। इसका नेक्स्ट पार्ट आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और हम इसी चीज़ को, इन्हीं चैलेंजेस को ही हम डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस से ही अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट इंशाल्लाह तआला शुरू करेंगे। तो क्या आप नेक्स्ट अवेलेबल हैं? क्या आप हमें टाइम देंगे?
2: जी डॉक्टर साहब, डेफिनेटली ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी जो कम्युनिटी है, अपने जो लोग हैं, उनके अंदर अवेयरनेस जो है वो फैला सकूं, लोगों को बता सकूं कि एक फार्मासिस्ट कितना इम्पोर्टेंट है इस सिस्टम के लिए, इस हेल्थ केयर सिस्टम और इस हेल्थ केयर सिस्टम की प्रोग्रेस के लिए एक फार्मासिस्ट कितना ज़रूरी है। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले आपके साथ जहाँ बैठ के इस तरह की डिस्कशन करने का और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने का।
1: इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड टू द FM 92.6 UCP।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया FM 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
4: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन,
4: यूसीपी नंबर वन।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया,
4: यूसीपी की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए, सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड।

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: News. मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना.
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी.
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया. आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
4: ओनली ऑन वन प्लेस. देन स्टे ट्यून्ड 92.6

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरोरतान सुरोरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCB की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

0: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हर गिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya. Ki duniya, ki duniya.
2: Do patte patjhad ke pedon se utre the, phir udne ki chahat mein us sehraon se guzre. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। ज़रा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
3: आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।